0: गट की धड़कन कैसी होती है सुन रही थी। ड्यूटी पे सोने के लिए 2 हफ्ते का सस्पेंशन और 2 हफ्ते का पे कट। हेलो, नाउ दैट यू जॉबलेस, हाउ अबाउट डिनर एंड डांस टुनाइट?
1: Is that a trick question?
0: No, I mean, I like bad boys who dance. So...
1: Yes.
0: Okay, see you.
1: Yes.
0: Hey. एड्रेस नहीं पूछोगे?

0: वो आंखें जो सिर्फ मुझे देखती थी, वो होंठ जो सिर्फ मुझे पुकारते थे, उन पर किसी और का हक बर्दाश्त नहीं होता।
1: वक्त ही कहां था तुम्हारे पास कि उन होठों पर ठहर सको, उन आंखों में उतर सको। अब मैं किसी और की हो चुकी हूं।

कौन कहता है कि बिछड़ने में मोहब्बत की हार है। जो अधूरा रह गया वो भी तो प्यार है।

0: 鲜的。
1: 那是地沟。मेरा नंबर डायरेक्टली बात करना डैड को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है ओके वैसे भी नंबर मिल गया तो डेस्को की तरह बिहेव मत करना आई कैरी पेपर स्प्रे
0: ओके
1: बाय द वे नेहा

0: अलिसा,
1: तिमीलाई थाहा छ नि है म तिमीलाई कति धेरै माया गर्छु भनेर।
0: यो कुरा चाहिँ गोप्य राख है।